0: the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
2: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ, थोड़ा फेवरेट शो बॉबीज़ पंजाबी टॉक शो लैके, तो अज का शो शुरू कर दें उस बहुत ही प्यारे शब्द नाल जिसनों कहा दिलजीत दोसांझ ने आर नानक पार नानक। तो उस तो बाद आपां गुरमत कथा विचार चलावांगे जो कि 8:45 तक चलणगे। अज साडे गैसट जो आंदे सीगे अंकल हरवंत सिंह चौहान जी, वो अज नहीं आ रहे थोड़ी जी हैल्थ इशू करके, पर आपां उन्होंने नैक्सट वीक जरूर मिलांगे। पर आपां शुरू करदे आं अज दा इस शो बहुत ही प्यारे शब्द नाल जिसनों गवाया दिलजीत दोसांझ ने आर नानक पार नानक। तो फिर उस तो बाद आपां गुरमत कथा विचार 8:45 तक चलावेंगे। सो 8:45 तो थोड़े सोंग्स की रिक्वेस्ट लवेंगे। सो रिक्वेस्ट भेजने लई साडी वैबसाइट ते जा सकते हो www.2miafm.org.au ते, ते तुसी सानू आई हार्ट रेडियो ते कम्यूनिटी रेडियो ऐप प्लस ते भी तुसी सानू सुन सकते हो। सो शुरू कर दिया अज दा शो इस बहुत ही प्यारे शब्द दे नाल आर नानक पार नानक।
3: सुल्तान गिरहा से ती मालकन कीड़ी तुलना हो वनी जे तिस मनो न मिसरे

मनुख को कहेंद बेचैन या सारे जहां की समेट कर जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। सारी दुनिया दी मुसीबतां ते परेशानियां रब ने कठियां कीतियां ते मेरा मन बना छड़िया। मैं इन्ना परेशान, मैं इन्ना बेचैन, मैं इतना दुखी, मैं इतना बेजार। पर गजब की गल सोचनी ते उसकी आसमान नूं छोंदी है, विचार ते उसके पाताल नूं छोंदे है, ख्यालां दी परवास ते बहुत उच्ची है। जद गहरा जांदा है ते पाताल दिस चला जांदा है, ते जद उच्चा जांदा है ते आकाश नूं हथ मारदा है। इतने उसके ख्याल, इतनी उसकी विचारधारा नहीं, ज्ञान है पर ज्ञानन में ज्ञान गुर, जिन्हें चर तक गुरु का ज्ञान नहीं, गुर शब्द का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, उतने चिर तक मन की शाख नूं चंगे फल नहीं लगे। जिवें किसी कोल पदार्थ का ज्ञान है, फल ते लगे ने पर चंगे फल नहीं, जिवें औलाद ते मिली है चंगी नहीं, जिवें मेहनत नूं फल ते लगे ने पर चंगे नहीं लगे जिहदे नाल तृप्ति हो सके। तो इस तरह मन की शाख नूं कई दफा फल ते लगदा है ज्ञान दा। एक विज्ञानक है जिन्हें हाइड्रोजन बम बना दिता है, ज्ञान ते बड़ा है उसके को, पर वो ज्ञान कादा ज्ञान जो मुल्क दी कौम दी तबाही दा बायस बने। ते जद हाइड्रोजन बम किधरे सुटा जाए ते लखां बंदे हमेशा दी नींद सौ जान, इतना वड्डा घात कीता जाए मनुख दे उत्ते, और ये किसी दी सियाणप करे, किसी दा ज्ञान करे, ये ज्ञान ते कुछ भी नहीं। ये ते इंज होई किसी दे शरीर नूं फल ते लगे है, औलाद ते मिली है, पर ऐसा गुंडा मिले है, ऐसा जालम मिले है, हिटलर जैसा और हलाकू जैसा औरंगजेब जैसा, चारों पासे मार धाड़ कतलो गार दुख ते परेशानी, फल ते लगे है किसी काम दा नहीं। तो मैं फिर अर्ज करा, मेहनत दा फल है धन संपदा, शरीर दा फल है चंगी औलाद, मन दा फल है गुरु दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान, और आत्मा दा फल है परमात्मा। परमात्मा मिल गया है, आत्मा नूं फल लग गया, ते परमात्मा दा ज्ञान मिल गया है, मन नूं फल लग गया, चंगी औलाद मिल गई है, शरीर नूं फल मिल जो है लग गया, धन संपदा मिल गई है, ते मेहनत नूं फल लग गया है। तेरी मेहनत निष्फल ना जावे, ऐ बंदे तू प्रभु दा दामन पकड़, ते परमात्मा ऐसा है जो दरख्तां नूं प्रफुल्लित कर सकदा ते तैनूं भी करेगा। गुरवर्ण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मानुख, अपने आप नूं निराश ना कर, जिहड़ा दरख्तां नूं सोहणे सोहणे फुल ते फल ला सकदा है तैनूं नहीं लावेगा। तू पकड़ उसदी टेक, तू पकड़ उसदा आसरा, तेरी हर शाख प्रफुल्लित होवेगी, तेरी हर शाख नूं चंगे फुल लगणगे, तेरी हर शाख नूं चंगे फल लगणगे। इस वास्ते अक्सर 99% ऐसा होंदा है कि महापुरशां दे घर महापुरश पैदा होंदे, गुरु नानक दे घर बाबा श्री चंद आउंदे, और ब्रह्मनिष्ठ ने ब्रह्म ज्ञानी ने घट नहीं ने। इन मैरस करदे हां, इह गल वखरी है कि ओह ग्रस्त विच दिलचस्पी नहीं रखदे सन, लेकिन गुरु नानक नूं ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਨ। ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇਗੇ। ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕੁਛ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਪਰਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਮ, ਉਸਦੀ ਟੇਕ ਪਕੜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਸਫਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।
तेरी आत्मा नूं परमात्मा दा फल लगे, तेरे मन नूं ज्ञान दा फल लगे, तेरे शरीर नूं चंगी औलाद दा फल लगे, ते तेरे मेहनत नूं धन संपदा दा फल लगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेरा वरतावन कि जिंदगी दियां इह चारे ही शाखां साडियां फलीभूत होवन, ते इस फल नाल साडी झोली भरी होवे, ते असी कह सकीए जीवन साडा सफल हो गया। सफल फलदायक, सफल दे अखरी अर्थ ने चंगे फल लग गए, सफल हो गई, जीवन सफल हो गया, जिंदगी सफल हो गई। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, मेरा वरतावन सारिया का जीवन सफल कर, सारिया के कर्मा भाग लावन, सारिया की जिंदगी प्रफुल्लित कर। बाकी दिन विचार तक सवेरे मुड़ चुके।

0: என்ன பதைய கொடுத்தலாம் கல்லான ஒரே ஒரு நாள் வச்சு அவர்
1: हेलो किथे जो की कांडे
2: बाऊ मैं रैली ते ही करता फ्री ओके ओके
3: चल आ जा फिर
4: ओए सोना
1: मैं कड़ा हटना